0: अनि त्यसपछि के भयो त बाबा?
1: त्यसपछि के भयो? फेरि पछि भनौला है बालक।
2: भोलि कैलाशपति शिव पार्वती की, भोलि बम्बई जाने रेल।